सिदक सबर की लड़ाई। जालम वजीदा खान नवाब बड़ी कोशिश की थी इसने छोटे साहबजादियां नूं वर गला के लालच दे के किवें इस्लाम धर्म दे विच लियांदा जाए। होरां दे डोलियां दा लालच दिता, धन दौलत दा लालच दिता, इत्थों तक आखिया कि तुहानूं

कैसा इंसाफ पिया हुंदा है। एक पासे छोटे छोटे बच्चे मासूम जिंदड़ियां गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे छोटे साहबजादे, एक दी उम्र 7 साल दी है, एक दी उम्र 9 साल दी है। बस इन्हां बच्चियां दा दोष यही गिणिया जा रहा है कि यह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी दे बच्चे हैं। वेखो इंसाफ किस प्रकार किया जा रहा है। पर धन है सिदक सबर, बाणी विच महाराज कहते हैं कूड़ निखुट्टे नानका ओड़क सच रही। इतिहासक वार्ता है ए, बड़ी कोशिश की इन्हां बच्चियां नूं ईन मनावण दे वास्ते इन्हां चंद लाइनां दे विच इस प्रकार बयान

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो
1: जेडियां थोड़ियां चीकां कलाकारियां ना एक गल याद आई
0: है मैनूं, सुननी
1: गल ध्यान
0: नाल, जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: Looking ahead over the coming days, here's what's happening across Yorkshire and beyond. First in Bradford, Buttershaw, St Paul's AODS, presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live, interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.
1: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Big things are happening at Sunrise Radio.
1: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
0: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
1: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: नफ्सेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद है। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: लुकिंग अहेड ओवर द कमिंग डेज, हियर्स व्हाट्स हैपनिंग अक्रॉस यॉर्कशायर एंड बियॉन्ड। फर्स्ट इन ब्रैडफोर्ड, बटरशॉ सेंट पॉल्स AODS presents Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat at St. George's Hall, with performances running from the 27th to the 30th of May. Also in Bradford, The Boy at the Back of the Class is at the Alhambra Theatre, bringing the award-winning stage adaptation to the city across multiple performances. Over in Calderdale, An Evening with Lord Ian Botham comes to the Victoria Theatre in Halifax on the 25th of June, with tickets now on sale. And still in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough in Halifax, showcasing contemporary analogue photography across multiple galleries. In Leeds, major touring productions continue at the Leeds Playhouse, including performances of I, Daniel Blake, running through the end of the month. In Manchester, Bank of Dave the Musical continues at the Lowry in Salford, telling the true story of Burnley businessman Dave Fishwick through music and comedy. Over in East Lancashire, live events continue at Darwin Library Theatre, with comedy, music and theatre performances running across the coming days. And finally, in Milton Keynes, sing-alonger The Greatest Showman is coming to Milton Keynes Theatre, bringing a live interactive screening experience to audiences. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: हुसैन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 FM और 100.6 FM पर पूरे वेक्स यॉर्कशायर में सुनाई देता है और डीएबी पे आप ब्रेडफोर्ड कीथले इल्कली स्किप्टन लीड्स हेलीफैक्स मैनचेस्टर ईस्ट लंकाशायर ब्लैकबर्न बर्नले डार्विन नेल्सन अकरिंगटन मिल्टन कीन्स आप सुन सकते हैं और इसी महीने में इंशाल्लाह आप ढाबी में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। अगर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं आप सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पर सुन सकते हैं www.sunriseradio.fm पर आप कहीं भी हूं सुन सकते हैं जनाब। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबकी मांगी गई हर दुआ कबूल और मंजूर फरमाए, हमेशा आप पर रहमतों और बरकतों का नाजूल फरमाए, आपको सदा खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और इंसानों की मोहताजी से बचाए, आमीन। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। दोस्तों प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप हमारा जरूर साथ निभाएंगे, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। अगर आप अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं या किसी गीत के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274306666।

तो दोस्तों चलते हैं क्योंकि एक बार फिर कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद आप छोटी सी एवेंट्स डायरी सुनेंगे और एवेंट्स डायरी के बाद आप जनाब हिट ऑफ द आवर सुनेंगे और हिट ऑफ द आवर का गीत जो होगा आप तमाम सुनने वालों के नाम होगा जनाब। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे छोटी सी इवेंट्स डायरी के आप के इस शहर ब्रेडफोर्ड में और गिर्दोनवा में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है तो वो बताएंगे, क्या किस जगह क्या होगा जनाब। तो आप ज़रूर सुनिएगा और साथ में हिस्सा भी लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद गीत, इवेंट डायरी, इवेंट डायरी के बाद गीत, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01 274 288 252 today to arrange your viewing.
2: ओह नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

क्या बात थी गीत की। और यकीन आप दोस्तों ने हिट ऑफ द आवर का गीत जरूर पसंद किया होगा। और अब चलते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इंजॉय करेंगे इस गीत को। बहुत ही प्यारा गीत है। मेरी जानिब से आप जहाँ कहीं भी हैं रेडियो को सुन रहे हैं, आपके नाम किया जनाब।

0: जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजें साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में आपने ये प्यारा सा गीत सुना दोस्तों, और ये गीत हमें कमर्शियल ब्रेक तक ले आया है। इस कमर्शियल पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि आपको बताएं कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की जो क्लॉक्स हैं वो क्या बता रही है।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46, यानी कि 11:46। तो चलेंगे कमर्शियल की जाने। कमर्शियल के बाद एक पुराना गीत सुनेंगे। जनाब तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया फ़ोन करने का। जनाब, आपने फ़ोन किया और आप गीत सुनना चाहते हैं सभी अपने दोस्तों के लिए, स्पेशली जनाब मलिक इसहाक साहब और हीरा साहब के लिए, तो उनके नाम करेंगे। और उसके बाद भाई रुखसार चौधरी, रुखसार अहमद साहब, आपने मचस्सर से फ़ोन किया, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त, बड़े दिनों के बाद पता नहीं कहाँ ये भी गायब थे, आज इनकी भी कॉल लगी, जनाब चौधरी मनीर साहब चक्की वाले जो हैं, उनकी भी, उनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। इस वक्त साइमा जी हैं, सुन रही हैं, उनके नाम भी करेंगे। और मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम, इकमाज, मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर, इफराज, इनके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। और ताज दुखी साहब, आप, मैं कमर्शियल पे जाने वाला था, आपकी कॉल भी लग गई, तो जनाब आपके नाम भी करते हैं। और ताज दुखी साहब, आप हमेशा जनाब जनाब जंगीर भाई के लिए और मेहताब हुसैन साहब के लिए जो है वो गीत सुनते होते हैं, तो उनके नाम भी करेंगे, तो जीशान साहब के नाम भी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

हाय हाय हाय हाय यार, ये तो बेवफाई वाला गाना लग गया है। ओ बेवफाई वाला गाना नहीं सुनना था ना यार, कोई मजे वाला गीत सुनना था। आपने ये बेवफाई वाला निकाल के काम कर दिया। मैंने सोचा कि मेरे दिल ने इतनी दुश्मनी की कि मेरी बात ना मानी, आपसे प्यार कर बैठा, कोई इस तरह का गाना होगा। ये गाना तो जो बेवफाई वाला, यार कौन बेवफाई करता है आजकल? कोई बेवफाई वाली चीज़ ही कोई नहीं है, आजकल नाम ही नहीं है बेवफाई वाला कोई। तो आप सोच रहे होंगे आप मैं साथ में हंसने भी क्यों लगाऊँ, हंसने इसलिए लगाऊँ यार, ये तो झूठी बातें, बेवफाई तो बहुत होती है आजकल, है ही बेवफाई है। तो ये चीज़ें सुनने का क्या फ़ायदा जब पता है बंदे को। चलिए रफ़ी साहब को सुनाते हैं आपको।

बहुत ही प्यारा गीत था जनाब रफी साहब की आवाज में, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और हमें आप बशारत भाई आपने फोन किया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये गाना पूरा नहीं सुन पाएंगे, बड़ा मजे का गाना है, बात सबसे करो प्यार हमसे करो। और बशारत वहाँ आज सिकंदर तो जनाब मजे कर रहा है, छुट्टी मार रहा है, आरिफ हैं आप के साथ। और स्पेशली रोजे रहमान भाई आप भी, यानी कि बंगाली भाई, और शकील भाई, शकील दानिश साहब आप भी वहाँ हैं, आपके नाम भी करते हैं। शुक्रिया दोस्तों फ़ोन करने का।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। वक्त बड़ा तेजी के साथ गुजर रहा है। वक्त के साथ साथ जिंदगी बहुत जल्दी कम हो रही है, तो जो जिंदगी है इसको अच्छे तरीके से गुजारिएगा, प्यार से गुजारिएगा, हंसकर गुजारिएगा। दोस्तों से हंस के मिलिएगा, प्यार से उनका हाल पूछिएगा। ये चीजें बड़ा मान ही रखती हैं। तो एनीवे दोस्तों, अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है, दो प्यार भरी आवाजें हैं और आप तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: सनराइज रेडियो, हिट आफ्टर हिट, द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो। सनराइज रेडियो, हिट ऑफ द आवर।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में. इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:12, यानी कि 12:12, और इसका मतलब साथ में ये भी हुआ कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है जनाब. और सुरेंद्र सिंह जी, और सतरिया काल सोने हो, और मक्खन मलाई दे पेड़े हो, लीड उठ के ते ब्रेडफोर्ड आके ली रोड ते तुसी जनाब नाश्ता किया है, ते हुण ते डिनर हो गया है. इहदा मतलब है कि जिहड़ा हुण नाश्ता कीता इनू जल्दी आजम करो कि 2 बजे मेरा प्रोग्राम खत्म होवेगा, ते फिर सोनियो लंच कठिया करांगे. ते तुसी जनाब कल्या जदों तुहानू पता हुंदा है मेरा प्रोग्राम है सवेरे सवेरे, तुसी नाश्ता कल्या करन आ जांदे हो, ते आई ते मैं कुछ नहीं कहंदा, ते आइंदा कल्या नाश्ता कीता तुसी ना, ते हाजम कोई नहीं होना जे मेरे तो बगैर. इस वास्ते जनाब ये चेते गल पल्ले बन लियो कि मेरे नाल ही नाश्ता करना जे आइंदा. तो बहुत शुक्रिया मेरे वीर, तुहाडा बहुत प्यार देण दा बड़ा शुक्रिया. तुसी बड़े प्यार करदे हो, प्यार करन वाले बंदे हो. रब तुहानू लंबी उम्र दवे, सेहत दवे, तंदुरुस्ती दवे, किसी का मुहताज ना करे. बड़े प्यारे दोस्त हो तुहाडे, जे दोस्तों से सानू बड़ा फखर है, बड़ा माण है जनाब. तो ये माण रब सारी उम्र कायम रखे जनाब. तो तुसी हसते वसते रहो, साडियां दुआवां तुहाडे नाल ने. तो जनाब कमर्शियल तो बाद तुहानू कोई प्यारा गीत सुनांदे आ, तो सारे दोस्तों भी सुनांदे आ. बहुत शुक्रिया सुरेंद्र साहब, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुना हंसराज हंस की आवाज में, और स्पेशली सुरिंदर साहब आपके लिए पेश किया था। उम्मीद रखता हूँ आपने पसंद किया होगा। लेकिन पहले पहले तो बड़ा उमदा है जनाब, लेकिन बाद में फिर क्या कहता है बंदा, ये भी सुन लेते हैं कि फिर क्या कहते हैं। तो जनाब सुरिंदर सिंह साहब, शुक्रिया आने का ब्रेडफोर्ड में और हमें फ़ोन करके बात करने का। आप के नाम और गीत करते हैं, और अब आने वाला गीत चौधरी मनीष साहब चक्की वाले हैं, भाई रुखसार अहमद साहब हैं मैनचेस्टर वाले, उनके नाम भी तारिक जुल्फी साहब की तरफ से, जनाब मलिक इसहाक साहब के नाम भी करेंगे, और इस वक्त बाबर शाह पे दो शहजादे जनाब बशारत अली और आरिफ अली जो हैं वो काम कर रहे हैं, और साथ में शकील दानिश भाई भी वहाँ अभी तक बैठे हुए हैं, उनके नाम भी, और रोज़े रहमान साहब आपके नाम भी करते हैं, और अब्दुल सतार दीवाना साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपके नाम भी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको भी गाना अच्छा लगेगा। तो जनाब चलते हैं, आप दोस्तों के नाम गीत करते हैं, और प्यारी बहना सादिया जी, हजरा जी आपके नाम भी करेंगे गीत थोड़ी देर के बाद, आपके नाम गीत करेंगे। फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा, और अभी हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है पापा शफीक साहब भी फोन कर रहे हैं। पापा शफीक साहब फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और अच्छा लगा आपने भी फोन किया, आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ इस वक्त काफ़ी सीढ़ियाँ काम कर रही हैं जनाब फैक्ट्री में। इकरा साहबा सुनना चाहती हैं नजमा के लिए, इफ़त के लिए, नाजिया के लिए, उमीदा के लिए, रुबीना के लिए, बुशरा के लिए, ताजीम, जायदा और साइमा के लिए, उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, मूना जी आपके नाम भी करते हैं, चलते हैं सुनते हैं ये अलका याग्निक और सोनू निगम की प्यारी सी आवाज़ में प्यारा सा गीत आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए। पापा शफीक साहब शुक्रिया एक बार फिर फ़ोन करने का, तो अब्दुल सतार दीवाना साहब आपका भी फिर शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम भी

अल्लाह करे दिन ना लगे किसी से, अल्लाह ना करे दिन ना लगे किसी से। क्या गाना था, चलिए एक और भूला बिसरा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करता हूँ।

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती भरा गीत सुना विनोद राठौर और साधना सरगम की आवाजों में। तो दोस्तों अब चलते हैं कमर्शियल की जानेब, और कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, और वो गीत प्यारा सा गीत जो होगा वो मेरी जानब से सभी सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

आपके करीब हम रहते हैं अपना नसीब तुम्हें कहते हैं साजना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में प्यारा सा गीत दोस्तों और चलते हैं अब अगले गीत की जानिब ये प्यारा सा गीत है प्यारी बहना सादिया जी आपका फेवरेट गीत आपके नाम और आपके साथ है आजरा जी उनके नाम भी और यही गीत नजमा सबा आपका फेवरेट है आप सुनना चाहती हैं इफ्फत नाजिया अमीदा रुबीना बुशरा इकरा ताजीम जायदा और साइमा के लिए और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम करेंगे और गुलाम भाई आप पाकिस्तान इंडिया गए हुए हैं जनाब और आपको बहुत मिस कर रहे हैं जल्दी आइएगा गुलाम भाई सुन रहे हैं ना जल्दी आइएगा और मलिक इम्तियाज साहब शुक्रिया फोन करने का आपकी पूरी टीम के नाम भी जिनमें जनाब इकमाज मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह देता उमेर बाबर और इफराज

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अलका याग्निक और गुरदास मान की प्यारी सी आवाजों में। तो उसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त 12:46, यानी कि 46 मिनट्स पास्ट जनाब 12। तो चलते हैं अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक पुराना गीत होगा, वो जनाब होगा मलिक इम्तियाज़ साहब। शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके साथ इकमाज हैं मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, उमेर, बाबर, इफराज, आप दोस्तों के नाम, और आपके साथ साथ सफ़ीउल्लाह भाई और जनाब अब्दुल सत्तार दीवाना और चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, हीरा साहब, तारिक जुल्फी साहब और जनाब अपने दीगर दोस्त इस वक्त बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, शहजादे बिशारत अली और आरिफ अली, उनके नाम भी, और जहाँ दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत, और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Sunrise Radio, Sunrise.
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और ये प्यारा सा गीत जो आप प्ले करने जा रहा हूं आप सभी दोस्तों के नाम मेरी जानिब से,

0: दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आगे हैं जनाब। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी ये प्रोग्राम का जो आखिरी आवर है इसमें भी आपके लिए अच्छे प्यारे और म्यारी गीत जो हैं वो पेश करूं। एनीवे अगर आप अपनी पसंद का कोई सुनना चाहते हैं तो भी या फिर कोई मेरा पेश किया हुआ गीत उसके साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। आपके लिए लाइनें खुली हैं। नंबर होगा 01274 306666। ये है नंबर दोस्तों और इसके रास्ते आइएगा। तो अब प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है ये तमाम दोस्तों के नाम करूंगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों मज़ीद टाइम को बातों में नहीं खर्च करते हैं बल्कि आप दोस्तों के लिए गीत पेश करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर। एंजॉय कीजिएगा
1: सनराइज रेडियो हिट आफ्टर हिट द हिट्स ऑफ टुडे एंड द हिट्स ऑफ टुमारो सनराइज रेडियो हिट ऑफ द आवर।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में जनाब साधना सरगम और कुमार सानू की आवाजों में। इसके साथ ही दोस्तों टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। अब्दुल कयूम साफ राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आप तमाम सुनने वालों को, तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज करते हैं, सबके नाम करते हैं गीत। और उसके बाद इमरान भाई ब्रेडफोर्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का, आपके नाम भी करेंगे। और इस वक्त काफ़ी सहेलियाँ काम कर रही हैं। इकरा आप सुनना चाहती हैं, नजमा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, तासीम, जायदा और साइमा के लिए। और इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी, अजरा जी आपके नाम भी करेंगे, और साइमा जी आपके नाम भी करेंगे, और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं। और मुदस्सर क्यानी साहब, आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब, आपके नाम भी करते हैं। बड़ा मस्ती भरा गीत है, आप सभी दोस्तों के नाम करेंगे।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप सभी ने एंजॉय किया होगा। एक और मस्ती भरा गीत आ रहा है जनाब आप दोस्तों के लिए, इस उम्मीद के साथ पेश कर रहा हूँ कि आप भी इसे एंजॉय करेंगे। बड़ा मस्ती भरा गीत है, इंजॉयबल गीत है, अच्छा लगता है सुनने में, भला लगता है। तो आप खैर सोच रहे होंगे अरे अमर साहब लगा दो गाना यार, ये खुद ही सुन लेंगे, अंदाज़ा कर लेंगे कि कैसा गाना है। आप इतनी जहमत ना करें और हमें इसकी डिटेल ना बताएं, हमें गाना सुनवाएं। तो ठीक है जनाब, लीजिए सुनिएगा और इंजॉय कीजिएगा।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, मस्ती भरा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही दोस्तों अब वक्त हमें जो कह रहा है वो कह रहा है कोई गीत नहीं होगा, कमर्शियल का टाइम हो गया है। और हीरा खान साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, और आप अपने तमाम दोस्तों के लिए गीत सुनना चाहते हैं तो आप दोस्तों के नाम करेंगे तो चलते हैं। अब क्या है कि कमर्शियल की जानिब चलेंगे, कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत सुनेंगे और वो प्यारा गीत मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम होगा जो इस वक्त सनलाइट रेडियो की निशियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात।

जी दोस्तों, कुमार सानू और अलका यज्ञ की आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। अब चलते हैं अगले गीत की जानेब। प्यारा सा गीत है प्यारी बहना सादिया जी, हाजरा जी आपके नाम और मुना जी आपके नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने गीत को एंजॉय किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही अब वक्त जो है मैं बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है, तो चलते हैं सुनते हैं जोहर की अजान। ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने सोहर की अजान सुनी और अब साथ में टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:45, यानी कि 1:45 तो जनाब महबूब अली साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपके नाम करेंगे, थोड़ा मस्ती भरा गीत है, सदाबहार पुराना गीत है लेकिन मस्ती भरा है। आपके नाम करेंगे, इरा खान साहब के नाम करेंगे, मुदस्सर कियानी साहब के नाम करेंगे, अब्दुल क्यूम साहब राइजिंग हॉल वाले उनके नाम, इमरान भाई ब्रेडफोर्ड वाले और मलिक इम्तियाज़ की पूरी टीम, पपा शवीक, अब्दुल सतार दीवाना और ताज दुखी साहब, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले, चौधरी रुखसार अहमद साहब, तारिक जुल्फी साहब, वाजिद भाई एडसफील्ड वाले, और आपके साथ साथ इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम करेंगे और दीगर दो जो दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम करेंगे, मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम का कहा उनके नाम भी, और इस वक्त बाबर शाह पे बिशारत भाई जो काम कर रहे हैं, और आरिफ अली उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त हैं वहाँ बैठे हुए उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आप प्यारा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: 24 hours a day. 103.2. This is Sunrise Radio.
3: Got the greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio.
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इस गीत के साथ ही दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है जनाब। उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11:30 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: सुनो नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

0: दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: कफ्सन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रेडफोर्ड 7230 30।

ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
3: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
2: You are listening to Sarah.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-30 दास ब्रेडफोर्ड 7230-30।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: पकड़
1: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: Ladies and gentlemen,
4: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: Number one.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-9 935.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: Okay, so listeners, the time is coming up to the ad break. Straight after the ad break, so I have a beautiful Lata Mangeshkar track, which I'm going to dedicate to Auntie Jeeth Kaur that got in touch. Lovely to hear from you, Auntie Jeeth Kaur. The next track is going to go out to you. Syra from Bradford, lovely to hear from you as well. The next track, which is going to be the all-important classic of the hour, I will dedicate to you as well. Before that, though, let's have this riddle. Jihad, today's riddle that I have got for you is... I'm a plant that blooms in various colours during summer. So what am I? Which plant am I? Actually, what I will say, it is a flower. So which flower am I? I am a plant that blooms in various colours. So what am I? In other words, I am a flower that blooms in various colours during summer. What flower am I? Let's see if you can solve that one. Okay, so listeners, before we go for the ad breaks, need to tell the time and they'll be back with the all-important classic of the hour straight after the ad breaks.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: To check your watch, the time according to the Sunrise Studios clock now is 44 minutes past 6. That is 6:44 p.m.
2: Ladies and gentlemen,
3: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
4: Number one.
5: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
6: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
5: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
6: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
7: नफसेन जायकातुल मौत
8: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रैडफोर्ड 723030
9: My favourite radio station, Sunrise Radio.
10: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रैडफोर्ड 7230 30।

0: पड़े।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
3: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move